0: क्लास तुम कुफा भी
1: निवान से चाम सोना फुमारे अच मुलाना सोंसान तीने नंप्रिस्ता अफतिये मिनिस्टर से अचुनिस मचारकार से तुम्हाने मिलापन तनान से नाम फारेर वे राजम प्रिस्ता नरो मगती चुमाजो न्यूनारो तीने निश्चिसरा राय इन्हें नहीं जाने निवान से रफामियास फूल दिमाग चुरवारी म्यूट नंदाला ने ना इजियान म्याचुनिया तीते ऐसा सान फंडेशन ने नहीं चम सही रिचा रिचुरू रियोने मामिल लफाते मना का नंहान नवाना सोची सुने स्टुचिफ्टो ना फामिया जाचिन चुम्बुजो अजमेरुफा चावता तीन नए अंबार रियो जाने सोफिरा Aiza, le fa napina nai, eva tap, eva tu sem confinement zoa, pani eva sembola tsana rayan de is, te mbatu kun tsi reva na kai ksan mumba nai, aiza, sema mbil ma de manzana, ne naya, ne wan nan ruan te tavan nan ruan, wan na rapitsu te tavan nan rapitsu.